नाम। सरंग जाम लाग भव जल तरण कै जन्म ब्रेथा जात रंग माया कै रहाउ। जाप तप सं

कहै। चाओ पई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस फुण तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रवे वारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। एत श्री चरित्रोपख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समाप्त। मस्त सब मस्त अफ जून दोहरा, दास जान कर दास पार, कीजा कृपा अपार। आप हाथ दया राख मोहे मन क्रम बजन विचार। चाओ पई मैना गणेश प्रथम मनाऊ, किसन बेसन कबहू नह त्याऊ।

मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो हो करे तेरा, कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किश है।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

अटल चवर छत्र तखत दे मालक सतगुरु सोहणिया दे सुल्तान विश्व दी इकलौती आस संसार दे सर्वोत्तक धार्मिक ग्रंथां दे विच्चों श्रोमणी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे मेरे पेरे दिवस नूं मनाउंदिआं होइआं महान नगर कीर्तन जिहड़े इन्हां पावन पवित्र अस्थानां उत्तों आरंभ होणे ने उन्हां नूं समर्पित विशेष ढाडी दरबार दे चल रहे इन्हां समागमां दी हाजरी भर के अपने मनुख जीवन नूं सफला बना रहे सरबत माई भाई तंता दे योग वढ भागे हो आओ मन बिरती एकाग्र करिए कोई रसना वांझी ना रहे सारी संगत दोवें हथ जोड़ के सीस झुका के भावना सहित फतेह दा सिमरन करो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कीती है रहमत कीती है मनुखा जीवन मिलिया है ते मनुखा जीवन अंदर सानू गुरु चरणा अंदर गुरु गोद अंदर जुड़ करके सतसंगत विच हाजरियां भर के गुरबाणी कीर्तन कथा विचारां गुर इतिहास सरवण करन दा सबब मिलिया है। पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर हाजरी भर रहे सरबत माई भाई भावना प्रेम सहित आओ समुचे रूप अंदर सरबत दे भले दी अरदास करिए ढाडी कला नूं प्यार करन वाले ढाडी कला दे प्रेमी अज दे इस विशेष ढाडी दरबार अंदर संगती रूप अंदर जुड़ करके हाजरियां लवा रहे हो एक बार कह दियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। आप जी ने सरवण कीता गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दा प्रकाश एक लड़ी बनाई अति सत्कारयोग उस्ताद ढाडी ज्ञानी तरलोचन सिंह जी भमद्दी उन्हां ने जिहड़ा विशा उन्हां ने कल दा आरंभ कीता है मैं उहदे विच्चों कुछ भी आप जीआं दे नाल सांझा नहीं करना क्योंकि उन्हां ने उह आप जीआं नूं अगेरे सरवण करवाउणा है। लड़ीवार पिछले एक जुलाई दे दीवाना तों आप जी मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जीआं दा इतिहास गिणदे दीवाना विच ढाडी जिथे पासों सरवण कर रहे सी सो जिहड़ा दास पिछले दिनां अंदर सुणा के गिआ है आपां उहदे विच्चों भी दुबारा रिपीट नहीं करांगे क्योंकि आप सरवण करदे हो लाइव सरवण करदे हो इत्थे हाजर हो के सरवण करदे हो सो अगलेरा पक्ष आप जीआं दे नाल अज आरंभ करके फिर कोशिश करांगा कि वह आप जीआं दे रूबरू कह के आप जी दीआं खुशियां प्राप्त कर सकां। पंचम पातशाह गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जीआं नूं गिरफ्तार करन दा हुक्म जदों जहांगीर ने दिता ते उन्हें यह इकबाल तुझके जहांगीरी विच वी कीता है कि जदों विरोधियों के वलों मैनू शिकायतें मिलिया मेरे अपने अंदर की भावना भी सी कि मैनू अल्लाह मौका देवे मैं ब्यासा दरिया के किनारे बनी झूठ की दुकान नू सदा वास्ते बंद कर दिया बहाना लभदा सी जहांगीर बहाना जल्दी लभ गया। उन्हें मुर्तजा खां नू हुक्म किया कि गुरु अर्जन देव नू गिरफ्तार करके लाहौर लिया जाए ओदा माल सबाब जायदाद धन दौलत वह जब्त कर लिया जाए। पंचम पातशाह गुरदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी नू शहीद कर दिता गया गुरु घर दियां जमीनां उत्ते सरकार दी शह उत्ते कब्जे हो गए। श्री गोबिंदपुरा नगर वसाउणा सी पंचम पातशाह गुरदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मोड़ी गड्डी लेकिन पातशाह जी नू शहीद कर दिता गया जिथे अज नगर वसिया श्री हरगोबिंदपुरा 1644 बिक्रमी अंदर पंचम पातशाह गुरदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस नगर की मोड़ी गड्डी सी। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज 1687 विच इत्थे आए ने यह हवाला सानू मिलदा है चेते रखो महान कोश दे विचों जेड़ा यह नगर की जमीन है यह बादशाह दे हुक्म नाल चंदू की शह उत्ते चंदू दे रिश्तेदार भगवान दास घेरण ने अपने कब्जे विच कर ली। समा बदलिया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए फिर प्रचार प्रसार करदिआं पहली जंग जितण तों बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज रियाड़की दे इलाके विच आए ने ब्यासा दरिया का किनारा है। गुरु के सिखा ने बेनती की पातशाह इत्थे नगर आबाद किया जाए ते पातशाह ते जानदे सन कि इत्थे ते नगर की मोड़ी गड्डी जा चुकी है वह हुण किसे दे कब्जे विच है जेड़ी मलकीयत साडी है जे कोई उहदे उत्ते कब्जा करके बैठा ते उह कब्जा छडवाउणा भी ते सूरमिआं दा धर्म है ना। पातशाह ने आख्या जमीन साडी है
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਖੱਤਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੋਲ ਭੈੜੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਅਪ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਚ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ।

0: जग अंदर शीतल खटिया की किसे जग अंदर करके गुरा नाल कम सान पाई हो
1: सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी दा मुख वाक है केंदे जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला जिस बंदे दे अंदर ईरखा है ना द्वेष है ओदा कदे भी भला नहीं होना। भगवान दास केरड़ ए चंदू दा रिश्तेदार लगदा है, ईरखा है गुरु घर दे नाल चंदू दे अंदर भरी ते चंदू दा अंत ओदे कीते हुए गुनाहां दे कारण गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां दे सिखा वलो नक च नकेल पा के जुत्तियां दी मार दे सिर च मार दिया होया लाहौर दी धरती ते गुरदित्ते पड़पूंजे दे हत्थों करवाया क्योंकि गुनाह दोष बड़े वड्डे ने तुसी श्रवण कर रहे हो। इत्थे भगवान दास घेरण ने चंदू दी शह उत्ते जमीन ते कब्जा कीता सी, अज असली मालक आ गए ने अपनी जमीन उत्ते आके नगर वसाया जा रहा है। मोड़ी गड्डी नाम श्री हरगोबिंदपुरा ब्यासा दरिया नाल दी वगदा है। ईरखा दे नाल भरे हुए भगवान दास घेरण ने आके अप शब्द बोले, अप शब्द मूह च जबान है जबान च हड्डी कोई नहीं, सियाणिया दा कथन है पहला तोलो ते फिर बोलो। चेते रखो इस जबान विचो निकले शब्दां नू रोकण वास्ते बत्ती दंद ने अगले बन्ने बोल लगे ने, भी शब्द जेड़े ने थोड़ा जिहा सोच के बाहर कढ़ी। सियाने कहिंदे ने जबान कहिंदी तू मैनू मूहो कढ़ मैं तेनू पिंडो ना कढ़ाया ते फिर कवी। भगवान दास घेरड़ बोलिया ते बोलिया बहुत गलत, बर्दाश्त नहीं कीता सिखा ने। बाबे बिधी चंद साहिब ने कहिंदे गलमे नू पा के हाथ दिता मरोड़ा लाग्या करके कहिंदे सज्जे हाथ दी इक धौल मारी गिच्ची च, कहिंदे भगवान दास घेरड़ दी धौण दा मणका टुट गया। मणका टुटा जान निकल गई किते उत्ते ही अड़ी सी, पातशाह ते मर गया हुण बई ते वस किसे दे नहीं ना, की करना लत्ता तो फड़ो बाहां तो फड़ो ते ब्यासा दरिया च रोड़ दियो। सुट दित्ती लाश ब्यासा च, जेड़े नाल आए सी भाई दिया देर ना लाई, दस दिता एदे पुत रतन चंद नू जाके के तेरा प्यो गुरु हरगोबिंद साहिब दे सिखा ने मार के दरिया च रोड़ दिता ही। हुण इन्हें किया जलंधर का रुख, जलंधर बैठा है। चेते रखो चंदू का भरा लाल चंद जड़ा अब्दुल्ला खान दे कोल पेशकार है, जलंधर का तहसीलदार है करमचंद, ये चंदू का पुत्र है। ये करमचंद नू लेके लाल चंद नू लेके नाल कहिंदे ने कि पिटिया अब्दुल्ला खान दे कोल जाके मेरा प्यो मार दिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने, पहली जंग जित ली, चेते रख जे मेरी मदद करेगा गुरु हरगोबिंद साहिब नू जित लवेगा बादशाह भी तेरे ते खुश होवेगा क्योंकि पहली जंग विच शाहजहान दी बहुत वड्डी हार हुई है। कहिंदे 15,000 फौज तैयार कीती, गल नेड़े करा, 15,000 फौज अब्दुल्ला खान दे दो पुत कहिंदे करीम बख्श ते नबी बख्श तैयार होए, मोहम्मद खां तैयार होया, बैरम खां तैयार होया, अली बख्श तैयार होया, इमाम बख्श तैयार होया, नाल इत्थे चंदू लाल दा पुत कहिंदे करमचंद तुरिया, भगवान दास घेरड़ दा पुत्र रतन चंद तुरिया, 15,000 फौज लेके मार दे जा अली दे नारे श्री हरगोबिंदपुरे नू वधे ने। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जीआं दे कोल वी खबरां आ गईआं ने, कहिंदे ने कि तैयारी शुरू हो गई, करन तैयारी खालसे चोट नगारे ला, तीर खड़पे उड्डणे जहर च लै बुझा, रेशम वट्टियां तंदियां धनखी खिच चढ़ा, अर्जन दे गांडीव ज्यों जो जो रहे अजमा, कई पत्थरां ते रगड़ के बरचे रहे चमका, तक तक के कल जोगना अज रहियां शगन मना। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां नू मिल गई है खबर, अब्दुल्ला खान 15,000 लेके चढ़ आ रहा है, ओदे स्वागत वास्ते मेरे सच्चे पातशाह दे जुझारू योधिया ने तैयारी

0: रहता शब्द सो सार।
1: गौण गगन जब तबह न होता हो, त्रिपमन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख आसरूप सो एक।

0: आई। सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई।
1: 1366 ते दोबारा भगत कबीर जी दे नां ते सरलेख फिर आवेगा 1366 अंग ते अगे जाएगा। हांजी।

निग्रह पाठ थोड़ा कस के करना। सो गिर ही जो निग्रह करे, निग्रह का अर्थ हुंदा कंट्रोल, जिहड़ा अपनी इंद्रियां नूं अपने मन दे वस दे विच कर लवे। ते महाराज कहिंदे उह गृहस्थी है। सो साध संगत जी, एक 950 अंग ते संगत वल्लों परची आई है, उहदे उत्ते लिखिया गया है कि एक पंक्ति च लेखा पाठ शायद पढ़िया गया है। अग्गै दरग है लेखा मंगिया, मार खुआर कीचह कूड़ियार, खखे दी दुलावां नाल ही पाठ शुद्ध है, शायद खखे नूं ला नाल पढ़िया गया। सो साध संगत जी, इस पंक्ति नूं भी जिवें इह पंक्ति आई है, निग्रह पाठ कस के करना, सो गिरही जो निग्रह करे। हाँ जी।

जड़ कोड़ माया जीवन का लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लोही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नो प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़ झूठ। कोड़ मिया कोड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज से कहने ने सब कुछ कोड़ ही कोड़ है। क्यों किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। किसनों पकड़िए सब कुछ चलायमान है। न इथे दिन टिके होया है, न इथे रात टिकी हुई है, न इथे बचपन टिके होया है, ना इतने जवानी टिकी हुई है, ना इतने बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया तो फिर कुछ भी टिके होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहे होवे ते चलायमान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नू पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नू पकड़न की कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नू पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा, जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दिश ना आवे, जैसे पवन नू पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दिश बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दें ही हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे चना आवे, चलायमान है, उसनों चंचल आखे है, उन्हों कूड़ आखे है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस एक कूड़ चाहिदा है, यही संसार चाहिदा है। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे करते ने वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरवाणी कहती है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लेके खुशी मिलती होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे मनमुख है? जिसकी सारी खुशी लैण दिच खड़ी है, जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरों लेना पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है, ये लोभी दे लक्षण है। हथों देके भला मनाए, देके खुशी होंदी है, देके प्रसन्नता होंदी है। और जिसनों दिता जांदा है उसका भला भी मंगता है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, पर जे लैण दे चाहे तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होवेगी।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਬਰਫ। ਕੂੜ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਭੀੜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਭਗਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਲੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭੀੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜੀਏ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੀੜ ਆਖਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਭੂਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤਨੇ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਗਤ ਉਸਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਗਤ ਉਸਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਭੀੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਨ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲਕਸ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਈਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ
ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਬਿਰਧ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਯੁੱਗ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਦੁਆਪੁਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ, ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਬਣੀਏ, ਕਲਯੁੱਗ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗਾਂ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਸਤਯੁੱਗ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਗਰਭਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸਦਾ ਉਹੀ ਪਾਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਉਸਦਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬੋਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਸ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸੁਭਾਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ,
जिम्मेवारी नहीं है। सचुगी जीव कल्ला तनहा जीण वाला पहाड़ां दियां कंदरां दे रहन बसेरा करन वाला रुखां थले रात कटन वाला प्राकृतिक रूप दे जीण वाला। कोई रिजक दी चिंता नहीं सी, इतनी वनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल स्वभावक उपलब्ध सन। ये जी रहे सी इस तरह जैसे गर्भकाल दा बच्चा जी रहे है। निश्चिंत सी, बेफिकर सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई परबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल दे बच्चे नो आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसी दी भी लोड़ नहीं है। ओते उस अवस्था दे जी रहे है जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दित्ती जांदी है, ओते स्वभाविक है उसदे कोल मन उसका टिके होया, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहन के वन जारिया मित्रा हुकम पाया गरबास उर्द तप अंतर करे वन जारिया मित्रा खसम सेती अरदास। भावे उल्टा है गर्व दे पर अरदास दिच है, प्रार्थना दिच है और नाम अभ्यास दिच है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बन दी है, प्रार्थना जो आनंद बनता है वो उसके कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहे है, उसे ही रस दे जो है जी रहे है। इस वास्ते कहिंदे ने सतयुग दिच अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन भायो, बावन अवतार बोना अवतार। हां कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नु कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल, खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दिच भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे स्वतंत्र होके जो है जीवदा है। ये जीवना स्वभाविक उस मनुख कोल सी जिसनु असी सतयुग कहिंदे आ ते सतयुगी जीव कहिंदे आ। जैसे बुढ़ा भी बचपन नु याद करता है, किसे हद तक गर्भकाल दी अवस्था नु याद करता है, हो बहो सतयुग मनुख नु बार बार याद आउंदा है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो स्वभाविक अवस्था सी एक ब्रह्म ज्ञानी दी, स्वभाविक प्राकृतिक रूप दे, उसनु हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याद है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नु खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे ने, गर्भकाल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो रहा है, ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी, प्रकृति ने ही उसनु जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी और उस दिच
मनुख जी रिया सी सत देच संतोख देच सतजुग रथ संतोख का धर्म वे रखवा मर्यादा देच जी रिया सी भुख लगी है ताई खांदा सी उंज नहीं प्यास लगी है ताई पींदा सी उंज नहीं नींद आई है ताई सौंदा सी उंज नहीं बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लबन वास्ते इनू परिश्रम भी जे थोड़ा बहुत करना पैंदा सी उदे नाल इस दी एक तरीके दे नाल वर्जिश हो जांदी सी और इतना शरीर नू चाहिदा भी सी तो स्वस्थ सी मन करके तन करके सुखी सी सतजुग दी बस यही रूप रेखा है पर इस अवस्था ते कोई माण नहीं कीता जा सकता गर्भकाल दा बच्चा की माण करिए उसते उस जिंदगी ते कोई माण कीता जा सकता है हाँ मानसिक अवस्था ते भी माण नहीं कीता जा सकता आनंद कोल है रस कोल है पर अचेत है बिल्कुल अचेत है आनंद दी समझ कोई नहीं उस रस दी भी समझ कोई नहीं और जिस दिन समझ आएगी बोध आएगा उस दिन आनंद नहीं होगा आखिर गर्भकाल चो मनुख आया कबीले बने कुटुंब बने जात पात बनिया इलाकियां दियां वंडियां हुई छोटे छोटे रजवाड़े बने ये त्रेता युग से जब छोटे छोटे रजवाड़े बने कबीले बने परिवार बने जात पात बनिया जिम्मेवारियां वधिया उन्हां दी पूर्ति दे लई शक्ति चाहिदी सी ताकत चाहिदी सी तो त्रेते रथ जते का जोर अगे रदवाओ हर परिवार जोरावर होना चाहता सी हर कबीला शक्तिशाली होना चाहता सी हर राजा महाराजा अपना राज विस्तार चाहता सी ए मनुखी दौर दा ओ बचपना सी जो मां दी कुख तो बाहर आके बच्चा धरती दी गोद दे चाहुंदा है घुटणिया दे बाहर चल रहा है खिडौणिया नाल खेड रहा है और उन्हों ताकत चाहिदी है उन्हों शक्ति चाहिदी है एक बच्चा जोरावर होना चाहता है तो यह बचपन का दौर सी तो यह बच्चा मर्यादा दिच रवे मर्यादा च बोले मर्यादा दिच उठे मर्यादा दिच खावे पीवे तो त्रेते युग दिच अवतारी पुरुष आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस अवतार नो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया तो ठीक है जीवन मर्यादा दिच नहीं सी राजे दी की मर्यादा प्रजा दी की मर्यादा गुरु दी की मर्यादा शिष्य दी की मर्यादा मां बाप दी की मर्यादा और औलाद दी की मर्यादा ये सारी तरतीब जिसने दिती ये देश उसनु जानदा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेते युग दे अवतारी पुरुष मर्यादा दी खातर मर मिटना है जीवन भी चला जाए लेकिन मर्यादा नहीं जानी चाहिए मर्यादा कायम रहनी चाहिए अपने प्राणा नु दे के भी मर्यादा नु बचाया जाए संजोया जाए तो ए एक युग से जिस विच मर्यादा दी परंपरा चारों पासे चली पर ए बचपना से बचपन दा दौर से मनुखता दा बचपना से ताकत चाहिदी सी जोर चाहिदा सी इस वास्ते जोर छीना झपटियां आम सन तो मर्यादा देनी पई जैसे अक्सर बच्चे खोआ खाई देच रहिंदे ने और बच्चा देना नहीं जानदा लेना जानदा एक बच्चे कोल पंज खिडौने होवन
दूसरे कोल एक होवे तो उसनु इतना कह दिए तू इना पंजा दे चो एक दे दे ताकि उस कोल दो हो जाणगे तेरे कोल चार हो जाणगे। वो पंजा दे चो अपना एक नहीं देगा बल्कि दूसरे दा एक भी खोण दी कोशिश करेगा। ये बच्चे दा सुभा इतरे ते युग दा सुभा सी खोया खाई ते खोआ खाई दे सफलता मिल सके जोर ते चाहिदा सी ताकत ते चाहिदी सी। जिंदगी दा लक्ष्य जद जोर हो जाए ताकत हो जाए ते प्राप्ति दा साधन जद जत हो जाए तो ओ त्रेता युग बचपन दा दौर आए उस विच श्री राम प्राइमरी स्कूल दे उस्ताद कहे जा सकते ने और प्राइमरी स्कूल दे बच्चिया नो पढ़ाण दा ढंग खास करके नर्सरी दे बच्चिया नो पढ़ाण दा एक ढंग समझाण दा एक ढंग श्री राम ने आरंभ कीता। द्वापर जवान हो गया मनुख हुण इसनू उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है हुण इसनू बोलण दी तमीज सिखाण दी लोड़ नहीं है जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नू भी कहना पे तो इंज बैठ इंज चल इंज बोल तो शायद अजे वो जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नू समझदा है बालग हो गया है। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण और कृष्ण जी नू कहन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है एक लीला है एक रास लीला है। जीवन दे शक्ति बड़ी है ताकत बड़ी है उछाल बड़ा है होम दे उबाल बड़ा है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा ए उछलिया होया होम ए उछली हुई शक्ति अनर्थ नु जन्म ना देवे तो हुण कुदरती गल्ले उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा जब जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर ए विचारधारा देण आए श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल मर्यादा सहायक होवे मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे मनुख मरे उथे उथे मर्यादा नु एक पासे कर दिता जाए मनुख नु मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा की पालना करदे आया श्री राम ने गर्भवती सीता नू अपने घरों कर दिता। मर्यादा की पालना करदे आया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी बहु गिणती विच अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नू मनना ही पाएगा तो सीता नू घरों कढ़ना पाया जदके निर्दोष है पवित्र है सतवादी है निर्दोष नू भी मर्यादा सजा दे देवे ए श्री कृष्ण नू काबले कबूल नहीं सी। जीवन नू लीला दी तरह लो मर्यादा बोझ ना बने सिर दा भार ना बने कि सिर नू दबा के रख दे। तो इस तरह इस द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण किसी विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं किसी खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है जीवन एक तमाशा है और लीला दी तरह जीव पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ उच्चा आचरण बनाओ।
पर जीवन नु फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग बिरध अवस्था, बुढ़े तोते नो प्राण ले आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिरदा बोझ होवे।

मांसदा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वड के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुल देने। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नाते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नाते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी क्योंकि सब कुछ धर्म दे नाते होया, राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पानी आया, देश दी सारी दौलत देश दा हुसन सब मंदरां दे सी, सब कुछ नू छड़ के वो मंदिर ही लुटते रहे और मंदिरां दे चों उन्हां नू सोने दियां मूर्तियां हीरे जवाहरात प्राप्त होए, देवदासियां दे रूप दे हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई, इसे नू ही बन के वो अपने मुल्कां नू गमन करते रहे और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होन लग पे और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों जावरां दी तरफों जरवाणियां दी तरफों और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे विच वी राग आए संगीत आए पर मर्यादा दे, पदार्थ आए लंगर दे रूप दे पर मर्यादा दे, धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे मर्यादा दे रूप दे। पर ये मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे, राग दी धुन कीर्तन दे राही संगीत दी धुन कीर्तन दे राही ताके जीवन देच रस बनिया रवे और रस मर्यादा देच रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है, पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है, वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नू जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख बंडदी होई सुख लेंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे, ए दो किनारियां दे बंधन दे चले और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए संतोख ते दया। धौल धर्म दया का भूत संतोख था रखया जन सोत, अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश ए संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाकई ए उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलुक दी तंगदिली भी हटा दिती, सरबत दे भला मनन मंगण दी जाच सिखाई और आख्या सरबत दा भला मंगो, सारा संसार थोड़ा मुलुक है, थोड़ा मुलुक केवल थोड़ा मुलुक नहीं सारा संसार ही थोड़ा मुलुक है और थोड़े मुलुक दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं सारा संसार साडा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल युग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दे पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालू होंदा है ते स्याणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलता भी है उम्र का तकाजा देख के।

0: थी। देखो जिन्ने से गए भाई मरदाना जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास साहब जी, आ दिन आने वाले ने भाई साहब भाई मां सिंह जी है जेडे गुरु जी की झोली च गए। उन्होंने इको गल कही वाहगुरु बोल। उन्होंने चेते नू खिंडन नहीं दिता, अपनिया इंद्रिया संकोच लै। इको सिर्फ घटना श्रीमान भाई वीर सिंह जी दे परम मित्र सन, मैं एक बार सुनाई सी इत्थे जी, तुहानू याद आ जानी है, चलो ताजी कर लैने आपां याद। ओ छोटे हुंदे इकट्ठे पढ़दे सन ते ओ मित्र समां होया लंघ गया, ओ बीमार हो गया, कदी मिले भी नहीं। उंज भाई साहब तो शुरू तो प्रभावित सी क्योंकि इन्हां दे नाना जी बंदगी वाले, इन्हां दे दादा जी बंदगी वाले, इन्हां दे बाप। श्रीमान भाई वीर सिंह जी नूं सुनेहा घल्लिया, उन्हां जी मैनू मिल जाओ। भाई साहब नूं चेते आ गया, जदों गए उन्हां नूं एडी बीमारी भैड़ी लगी सी, मंजे ते पए सन, ते भाई साहब गए उन्हां दे चेहरे तो बस्तर हटाया, ओ रो पए क्योंकि हर गल चेते आ गई, बचन की उम्मीद कोई नहीं। भाई साहब ने ना प्यार नाल कन्ना कुल कन कुल गल कही, प्यारे जी ओ पहचान गए भाई साहब आ गए ने, पहचान के बड़ी धीमी आवाज कहिंदे ने भाई साहब अरदास करो मेरा छुटकारा हो जाए। उन्हें कहने भाई साहब कन्ना कुल आवाज कर कहिंदे प्यारे जी ओ बोलो धन गुरु नानक देव जी, बोलो धन गुरु नानक देव जी। ते नाल कहिंदे ने मेरे बाबा जी साई ने, मेरे बाबा जी कसाई नहीं, साई ने साई दर ते संभालदे ने, कसाई कौन दा है, बोलो वाहेगुरु। ओ बोलन लग पे वाहेगुरु वाहेगुरु, प्यारे ओ गुरमुख बुला लिया सी ना, वाहेगुरु वाहेगुरु बोलदे आ भाई साहब बोल गए। ते अंगे कहिंदे आ घरदे नूं हुण कोई दूजी गल ना करियो, जेड़ा इन्हां दे कोल आवे बस धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक देव जी, वाहेगुरु बोलो। भाई साहब घर आ गए, रात सुते सुपना आया, वो सज्जन लाची बेर कोल खलोता, भाई साहब दी रचनावां विच है, गुरमुख सिक्ख्या विच भी ते प्रसंगलियां विच भी। वो सज्जन लाची बोर बेर कोल खलोता है ते कहिंदा भाई साहब जी शुकराना गुरु रामदास जी ने मैनूं अपने कोल बुला लिया। भाई साहब उठे उदो 1:13 वैसे लिखदे आ, सवेरे नौकर नूं भेजिया भी वह सज्जन का पता करो, जो गए वह कहिंदे भाई साहब जी दस दिया जी उन्होंने राती 1:15 चढ़ाई कर गया, मेरी सिर्फ एक बेनती है इस देश की हुई दुनिया तो अगे कुछ दुनिया है, इस जीवन तो अगे कुछ जीवन है। जेड़ा भाई साहब ने शब्द पढ़िया ना, ए अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। ये शब्द पता कितने पढ़िया गया सी जी, जब तुम हिस्ट्री का पता होना। हां प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहिंदे आ ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए सचखंड गए ते उदो हुक्मनामा आया ते ए हुक्मनामा आया सी खुल्या कर्म किरपा पई ठाकुर। पर जेडे नदेड़ दे वसनीक ने ओ कहिंदे हुक्मनामा आया सी अब चल नगर गोबिंद गुरु का, ते कोई शक नहीं क्योंकि परंपरावां कई बार लिखत नाल बहुत वड्डा हिस्सा रखदियां। पर मैं कहा जी ए शब्द क्यों, फिर मैं उस वक्त उतों के गुरमुख ने कहा भाई साहब जी जो महाराज सचखंड जान लगे ते संगत नू क्या सारी संगत ते शब्द पढ़ो, खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई, श्रम थाके पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई, अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। ए जीवन पदवी है जी, चित विच वाहगुरु आ जाए, सतगुरु किरपा करे आप समूह औरंगाबाद दियां संगतां नूं सतगुरु रूहानी खेड़े बख्शन, भजन बंदगी बख्शन।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
0: गुरु रामदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच सब तो वड्डे दो पुन कहे, हालांकि बाणी च पुन मैं एक दिन अर्ज कीती सी पुन करके भी सिख रब दा शुकर करे, पुन करके खौमे ना करे, पुन करके भी खत्तों देके भला मनावे। महाराज बाणी च कहिंदे आ जिस दिन तू दान पुन कीता है उस दिन उस वक्त तू जुड़ जा, बजाय के लखान दे लोको मैं इना कुछ दे गया, जिस दिन हथों दे के तू कुछ दे के आवे
2: ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ।

0: संत का दुखन आर जा कट है,
1: संत का दुखन जमते नहीं छुटा,
0: संत का दुखन सुख सब जाए,
1: संत का दुखन नरक में पाए,
0: संत का दुखन मत हो मलीन,
1: संत का दुखन शोभा देहीन,
0: संत के हथे को रखे न कोई,
1: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन का दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन का दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए,
0: संतन का दुखन तृष्णा नह जले,
1: संत का दुखन सब को छले,
0: संत का दुखन तेज सब जाए,
1: संत का दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाउ को नाही,
1: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खन टिकन न पाई,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज तेहीन,
1: संत का निंदक दुखिया अर्दीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत के निंदा दुख मैं दुख,
1: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख न सुख ते तरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाऊ,
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अर बीज ते टूटे,
1: संत का दुखी कित काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उदयान परमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाई है,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना मृत की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
1: अपन बीजिया पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लय उबार,
0: संत का दुखी इं बिललाए,
1: ज्यों जल में हून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: ज्यों बुआर तेरे खेत माहे दुहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
0: कीर्तन निंदक का तुर ही पया,
1: नानक ज्योत सुभावे सुई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइय,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय,
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख न त्रिष्टै कोई,
1: जैसा भावे ऐसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिसकी हो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: रापी उसत करहो दिन रात,
1: तिसे त्यागो सास ग्रास,
0: सब कछ वर्त तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेला करने हार,
1: दूसर कौन कहे विचार,
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे,
1: वडपा की नानक जन से श्लोक,
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय,
1: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए, अष्टपदी
0: मनुख की टेक वृत्ति सब जान,
1: जीवन पौ एक है भगवान,
0: जिसके दिया रह अगाहे,
1: और न तृष्णा लाके आए,
0: मारे रखे एको आप,
1: नानक टैक्षना ही हाथ,
0: जिसका हुक्म भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक विघ्न लागे कोए,
0: उसत मन में कर निरंकार,
1: मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग,
1: सदा संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार्ग गोविंद,
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: अदर ज्ञान नानक उजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: चेतन मंतगनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: तुत कियो सो जी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया,
1: नानक तने निरंजन जाने,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सात संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
0: अन दिन कीर्तन केवल बखयान,
1: सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जम की फसा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक प्रसन्न लागे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
1: सो संत सोहेला नहीं दुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
1: सो सेव को किसते डरे,
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोधत सोधत सोधत सीजया,
1: प्रसाद तत् सब बुझया,
0: जब देखो तब सब शमूल,
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
0: मैं किशन मैंने किश मरे,
1: अपन चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनक जुगत रच था प्यो था,
0: अविनाशी ना ही किस खंड,
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए था नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
1: सगल संसार उदर तन मंत,
0: प्रभ के सेवक सगल उदारण,
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण,
0: आपे मेल लय कृपाल,
1: गुर का शब्द जप पै निहाल,
0: गुर की सेवा सो ही लागे,
1: जिसनो कृपा करे बट भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
1: सदा सदा बसै हर संग,
0: सह सुपाई हो वैसो होए,
1: करने हार पछाने सोए,
0: सबका किया जन मीठ लगाना,
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
0: जिसकी उपजे तिस माही समाए,
1: सुख निदान उन्हों बने।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आये
0: कर कृपा प्रभु आप मलाये
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नवही खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन के मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत के मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार है
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार है
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम

बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च धर्म की समझ ना होवे धर्म का बोध ना होवे और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने नहीं जितनिया मस्जिदा ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनागॉग ने इन्ने धार्मिक मंदिर और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माह होंदा ते है चंदन दा बूटा पर हर जगह नहीं आउंदा हर जंगल दे च नहीं आउंदा। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आउंदा सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है कश्मीर दे च आउंदा है एक अद मुलक होर बाकी किधरे नहीं आउंदा बड़ा बोके वेख्या गया नहीं आउंदा इधर हिमाचल दे च भी बोके देख्या गया नहीं होया कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देख्या गया नहीं होया बीच के देख्या गया नहीं होया सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नू जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत होंदे ते ने धार्मिक मनुख गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे नहीं आउंदे होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने साइंटिस्ट होंदे ने हर शहर दे च धनवान होंदे ने कारोबारी होंदे ने व्यापारी होंदे ने हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने हर शहर दे च संत नहीं होंदा भगत नहीं होंदा हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने दार्शनिक फिलासफर होंदे ने हर शहर दे च कलाकार होंदे ने हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने व्यापारी होंदे ने चोटी दे धनवान होंदे ने हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिदी है धर्म नू समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक बड़ी मेहनत है मानसिक जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे कोई धर्म दी समझ रखदा होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा है बहुत घट आउंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत दे च बस दो दी समझ चाहीदी है प्रभु दी ते गुरु दी ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं पर कंठ तक गल आ गई है मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा। हुण होर भी मैनूं कहण देणा बहुत सारे धार्मिक

महाराज जी दे दर्शन संगत सेवा प्राप्त हुई। आप जी ने बड़े ही प्रेम नाल अमृत वेले दे दीवान दी हाजरी भरदिया बच्चों दे जथे पासों आसा दी वार देखी।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah. Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत दे पाश, जो पिछे रह गए पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पास जगत देच इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा के कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां नूं भी यौन मनिया, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ में खिरिया, अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे हैं। तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हा ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआ देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालिया। पर ऐसे भी टीले जे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने, उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गलते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है गलते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह दा जीवन जीवदा है।

राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है, पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सोच चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकदी कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकदी कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ए भी दसण दे असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, इत्थे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंदी रहिंदी है, बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है, ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवे बदे न्या, मलक बहठा आए गढ़ लीता घट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं है ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकारमई हो गया, जीवन मसिया दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनैनं, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखां नु कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कुल तीन नेत्र ने, इहदे कुल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन, त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है, त्रिलोचन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नूं कहिंदे ने त्रैनैनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनैनं, ये तीन नेत्रां वाला कहिंदे ने, ये दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है, किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा, नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हूं कोई पता नहीं मां है, सामने प्यो खड़ा है उसनूं कोई बोध नहीं है मेरा पिता है, सामने बहन खड़ी है इसनूं कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है, ये मेरा भरा है, अजे अखां इसदियां दो खुलणगियां, सहजे सहजे खुलणगियां, सहजे सहजे संसार